वद पागी नाम समाही जियो, नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठदा नैनी जियो। मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख बिहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो। गुर सबदी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सद

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रे मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया। इन

साफ कर उपाया लख चौरासी जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत कर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्दे।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

अविनाशी, गुर के बचन कति जम फासी, गुर का बचन जी के संग, गुर के बचन रचे राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान, रहाओ गुर का बचन अटल अछेद, गुर के बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, किस प्रभ को आस पहरते आई, रमैया रेन

आए हो, गुर उपदेश मने में ले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत पय सुख सैल, वद्दे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तब लगाए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा।

पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो गोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवाने, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं पता।

तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

बहुर बहुर कुआहु लपटेरा पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा होन न पाये राम के दासा कौन सो विद जित राम गुण गाए कौन सो मत जित तरे ए माए राव जो पलाई सो बुरा जाने साच कहे सो बिखे समाने जाने नाही जीत अर हार इहो वलेवा साकत संसार जो हला हल सो पीवे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संग के नाही नेर लख चौरासी परमता फेर एक जाल पहाए पंखी रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पाग।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बहु न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहा विसाओ, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोर है।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

नीचे आया, मरम तुम्हारा घुरते पाया, सब गुरते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कह। गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, व्यापक हरख सोग विस्थार, व्यापक सुर्ग नरक अवतार, व्यापक तन निरतन पेख शोभा, मूल व्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापक बहुत।

व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत पूम रंक अरंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ही जात, सब किस व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां ब्या पैमाए, तहु नानक जिन

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे।

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग।

पार ब्रह्म परमेश्वर की आये गुर पूरे ते ए मत पाये रहाओ करण करावन हार दयाले जी जम सगले प्रतपाले अगम अगोचर

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरपूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बा पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछु मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जते भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

विचर आ गया तुचर पोग पोग जलय न पाये राम स्नेह तीर्थ संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत।

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई न कही जाए, छोड़ मान हर चरण।

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुख दाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

हर सा प्रीतम कर मन मीत, प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव, आद पुरख अपरंपर देव, किस ऊपर मन कर तू आसा, आद जुगाद जा का परवासा, जा की प्रीत सदा।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

सब कामा हर की भगत जन्म परवान, गुर कृपा ते नाम बखान, कहो नानक सो जन परवान, जा कह हृदय वसै भगवान। गौड़ी महला पंजवा, एक सों जा का मन राता, जिसरी तिसे पराई पाता, बिन गोविंद ना दिसे कोई, करन करावन करता सोई रहाओ। मने कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत्कत है न डोले, जा के हर तन सो सत्साओ, गुर पूरे कर दीनो विसाओ, जीवन पुरख मिलिया हर राया, कहो नानक परम पद पाया। गौड़ी महला पंजवा, नाम भगत के प्राण आधार, नामो तन नामो व्योहार, नाम वडाई जन शोभा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत के सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, साफ साफ जन नाम समारे, कहो नानक जिस पूरा पाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम से आया, तब के तावत मन तृप्ताया, सुख विश्राम पाया गुण गाए, श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ। चरण कमल अराद भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब तज अनाथ एक शरण आयो, ऊंच स्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द प्रम पौ नसिया, करन हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे, हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे, मन तन मुख हर।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुर पूरा पेटियां लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, राख लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप,

और मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माह डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे

टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पे तत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा, साध संगता की सरनी परो, मंथन अपना आगे तरो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, सास सास प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले, तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिन स्या खाओ। सैज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान। इहा उहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना। जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाना। अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सचरास, गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सुमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर

ताके संग किलवित दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पंजवा। हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मलमंता सोड उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नगर करे गौड़ी महला पन्नी।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर स्यों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल थल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस्के

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

सुख सहज आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ न पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभु बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की गय जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किल बिख सब तोए कर कृपा प्रभ जी।

किस्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभु अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा, प्रभु के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सुमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माए बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जा के हृदय वसै भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा, खादा पहनदा मुँह कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम सजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार,

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अप

बादले काम तेन कर पूंजी, सौदे को तावे बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर समीत। गौड़ी महला पंजवा सामा।

टोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

साज तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै देही, मैल न उतरे सुध ना तेही। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया आत्म प्रगास। हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आठ पैर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी महला पंजवा, सांस पाई गुर गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम

आगे आप क्यों थान वस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं। पप प्रवान सच निशान जा तो आप करे फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया। माया करी पूरन हर राया, रहाओ कहो नानक जाके।

पूजा तिलक कर स्नाना, छुरी काट देवे हसदाना, वेद पड़े मुख मीठी बाणी, जिया कोहत ना संगे प्राणी, कहो नानक जिस

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करतारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

हर संग राते जमकी नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अमदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग

निर्मल सोए, कहो नानक तिन को बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी मैला पन्नवा उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, एकत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लगदा।

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे। अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे। सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया। चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा। किसे अराध मेरा मन कीरा, रहा अंदिन जपो गुरु गुरु नाम। ताके

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण करावन पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्पोगाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागरे, गर्त परत जह

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नामा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत।

तो संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पा

हर पेखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिल रहनी है कोई संत मिला वे नेरा। रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा। अनद सुख पेटत हर।

आए कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका ग्रोह तुम दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे।

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महादुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पन्नवा ओ अविनाशी राया निर्भो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए असारो एक महल निवानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजी दर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा। जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

ज्यों किरकह हरियाओ पशुआ रहाओ, जो जाने तू अपने काजे सो संग ना चाले तेरे पशुआ। नांगो आयो नाग सुदासी फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ। एक देख रे कसुम की लीला राज माच तिन्हों।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उससे कटे नाही रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरहे दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

सदन सुहेले सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम को काट किए ने केवल जब से हूँ मैं मारी जन मरण को चूको।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पड़े सो तरया संत संग पूर्ण आशा।

पर इकतरा एक के वश किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पथ विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

रंगा पूरन हुई मन की आशा गुरु के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त

प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगो।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल कराके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

सर्व सुखदाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम सुतारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

जीत जन्म ए रतन अमौलक साध संगत जप इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिक बिक

तीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाद हर के आये।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही, हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जाती है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया

तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया सो

गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर पद तमी किस नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे गौड़ी महला पंजवा गर्भ

पान प्रभ का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा, खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिशा जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर किन में होत पराए

करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिए रहाओ। जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए। जो होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुध पाइए। मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए। शेर स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट नीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं पाया मन विषय ही मैं लुझी है। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

0: मैं कैसो कह पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला महला पंजवा।

करे। हर्ष शोक हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले। राव जौ लो हों कि सोचो चितवो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पे संत प्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लागियो। साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जागियो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आगियो। नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी पूख त्रिसन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संयम कर्म कमाने यह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिद तरिये जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराध्य उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जा।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन सिपागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

तन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एनिस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो ए विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग देख ताक उठतावे फुगत मुकत का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पही सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सह समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है शोभ सुमान चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इत थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने कौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई कहीं निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

दोए, तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्त सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राव सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, हिमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप ना देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्द आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र पास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीन है सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुगद अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट में खासा, हरनाकसले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई। जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया। इक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई। राम ना छीनिया अपनी पथ खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई। बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए। नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला। सोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला। लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी। बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली। एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे। बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो। ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो। खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा। बिन गुर शब्द ना सवरस का।

पहला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्याग है कवरे पाय मिले सत साचे फसरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा राज तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर तृपत ना कभू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बो नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृप्ताता गौरी मैला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेद करे बहु पसंद लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसारे सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान सुहेला बिन दम के

किसको वाह वाह जी शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जी मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका इहो जियो, गुर शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करप देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करप नहीं सच पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुतावे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेसी क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचय माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकाम।

ओ गुरमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिक देनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म कीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरापे जाका, उपजंप दर्शन कीजे ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, इनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों में मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्ध की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाव परमे पूले आवो जाओ मन मुख सूतक कवे न जाए जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव सबो सूतक जेता मो आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किस खाए सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे सूतक जाए मरे न जन्मे काल न खाए सातक सिमरत सोध देखो कोए बिन नावे को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरमुख उतरत पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रह समाए गौड़ी मैला की जा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हृदय उर्धारा गुरमुख सोबा साथ द्वारा पंडित हर पर तजो विकारा गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म कर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने न कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतुराई जो किस कमावे सो थाए न पाई आवे जावे खौर न काई मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहन चाना जम पकड़िया तभी पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिवलाए, होमे मैला यो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे होमे मारे, गुर के शब्द पंच संगारे। आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई। मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई। माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया। अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए। हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल ने

परम पुनाए मनुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हों मैं मार सच लिवला।

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिका माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हौं मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

हर हर राखो कृपा तार, सत संगत मेलाए प्रभ हर, हृदय हर गुणसार रहाओ। से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन, आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार, ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार। नाम मिले पत पाए, नाम मनिए सुख होए, सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना चिकन, तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पे पचन। तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए, जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए। सतगुर सेवन सो सोहणे हौमै मैल गवाए,

मन करहला गुरु गोविंद समाले रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाले, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल, रागौड़ी ग्वारे।

जब हो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो तावे

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द निरिद अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जा के एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा।

सहज अमृत पियो नाम, सहज कीनो जी को दान, सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया, सहज आसन अस्थिर पाया, सहज अनहत शब्द बजाया, सहज ऋण चुनकार सुहाया, ताके कर पार ब्रह्म समाया, सहज जाको परयो कर्मा, सहज गुर पेट्यो सच कर्मा, जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने, गौड़ी मैला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया, पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया, पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपुरे, कवन स्थान जो कबहु ना तरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे, रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला, गिर तर तरण गगन अरतारे, रवसस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अरपेदा, सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा, तीरथ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा, गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद नेचल सचताना, तहां संगत साध गुण रसे, अनपौ नगर तहां सदवसे, तें पौ परमा सोग ना चिंता।

जो इस मारे तिसका दुख जाए, ऐसा कोए जो दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगे सिजे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरु दुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता ने चलचीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जा।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर जा के चाकर को नहीं दान जा के चाकर को नहीं बान जा के दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जा के ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात जा की दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतुर नाही को मूड़ा ना को हीन नाही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस पागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवे साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाग

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दव की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी मैला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

जिन गुरमों को दीना जियो, अपना दासरा आपे मुरलियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार। कल कलेश पे परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरख काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण त्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्व सुनाम भगत कौ दीन। रागौड़ी माध महला पंजवा, ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे असंख अंत न पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया, रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया, चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही ओर तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया, जन नानक लगा रतन अमोल अप

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान तजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेविया सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो पावक सागर गहरो चर संतन नाभ तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दरस हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सा तन

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

जियो हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिरता।

रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे, एक लड़ी कुर लाए नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोह खुआई कूड़ विगुति ता फिर मुत्ती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए कासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर।

गुरु शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक कामणी।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया करे आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर के सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरुमति रंग लाए तेहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे।

अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतम अति प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगति पाए, सतगुरु बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंग दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, किन में दाम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची। विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो। आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद

साज गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सब सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लीलाए, नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए, ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए, बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए, माया बंधन टिके नाही छिनछिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जां गुर सबदी चितलाए, मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम।

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

रहे, जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहा तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आराधिये जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधारे नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान।

हरि प्राण मन तन जीव दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसें जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

एहो मतांत पकाइए सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाइए पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आइए सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रमुख होयो सांस सह स्वामी प्रगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओम साध सत गुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिष्टार सगल पाप कर करे उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुर्ग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेट

रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपाधारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, बस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक

0: कौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूती है।

क्षय रस राते अहं बुद्ध माया मधमाते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लावो।

को गमिये, जास रसन हर हर जस पन्ने, आए बसे साधु के संगे, अंदिन नाम त्यावे रंगे, आवत सो जल ना में राता, जा को दया मया विदाता, एक आवन फिर जोन ना आया, नानक हर के दर्श समाया श्लोक, यास जपत मन होए आनंद, बिन से दूजा पाओ, दुख दर्द किस ना बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो, किसे त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परो संत सरना, जे आसर एया पवजल करना, यैया जन्म ना आवे सो, एक नाम ले मने परो, यैया जन्म ना हारिये, गुर पूरे की टेक, नानक ते सुख पाया, जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे, पीत ऊत के बीत, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को, जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मात

खट शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, हो आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

खर्च खजाना नाम टंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दान ते।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कत्तो कोए, आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कै सोए पौड़ी।

फूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

काल के जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी।

सभागा चार कुंट देह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

हर पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी परम सुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रह हों आवे जाए। टहत टहत अब

इस मनुआ जीत हर मिले ते सूरतन वेश ना को जाने अपनो एक टेक आधार रेण दिन सिमरत रह सो प्रभ पुरुष अपार रेण सगल या मन करे एहू कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक प्रम पो काटी है चूके जमकी जो पौड़ी तत्ता कास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ ताहू संग न तन चले ग्रे जो बनने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल कर।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु, परपच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गमन, फतेह पई मन जीत, नानक गुर ते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी। फफा फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा, फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु।

आवे। बांध्यो आपन हों बंदा, दोष देत आगे को अंधा, बातचीत सब रही सियानप, जिसे जनाबो सो जाने नानक। श्लोक तै पंजन अग दुख नास, मने अराध भरे संत संग जे रिद बस्यो, नानक तेना प्रमे। पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना, परमेश्वर नर देवी देवा, परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डहकाए, दुत्तर महा बिखम ए माए, गुरमुख परम पै मोह मिटाया, नानक ते परम सुख पाया। श्लोक माया डोले बहु विधि, मन लपट्यो ते संग, मांगन ते जे

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

एकत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत विचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विधिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रगति।

खसमता ओ आ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक न जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन मूठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभु।

मालक मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत् लाहा माया तारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पाव जल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वख्याना। अखर मुक्त जुगत पै परमा, अखर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए मुख।

एक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

है अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख गावो, कल कले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास दिसंबर एक है, नाम जप अगणित अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

कै सिमरन दूख जम नसे, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अंधन जागे, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, प्रभ कै सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, छे सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुरु पाए, प्रभ कै सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मर जाए, अमृत नाम हृदय नाही सनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से स्वर्ग के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभो न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पार श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम गले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अंत पुनः चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग केहो जात अकेला, ते हर नाम संग होत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक विघ्न जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हों मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सिजानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सब बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साठ कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अगर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आप पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते करे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संग वड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खप शास्त्र सिमृत वख्यान जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव है महा उदास कपि सरथी वै अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर पूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ ना है नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गैनी सिजे छूटत ना ही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जगत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साफ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे साफ जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट पर चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को तन

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल।

मारे आ, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोगन पोजन सुख सूद, बिर पया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को देन, त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे, आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जान दूरे।

झूठ संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाई किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दब प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। दिल कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सर तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे।

तारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या संतान।

करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ता जस गावी जय।

प्रभुता के जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नाम।

खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है, साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलू कतहरे, साध के संग नरक पढ़हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख ना करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट बेसपू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई

हुक्म तार अदर रहावे, हुक्म उपजे हुक्म समावे, हुक्म ऊंच नीच व्यवहार, हुक्म अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

नानक दर्द गले अष्टपदी। जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे। सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही।

मिट जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए, करण

या समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ आप तीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते तिन कहो किस होए स्थान समंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्ग रोग ते ओ हर जन रहत आम दिन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिनमंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बढ़पा गए नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम कर्मान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबाय हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दरबै।

जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना देख करें एक रंग, नाना विद कीनो विस्तार, प्रभु अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूरे ओ पूरन सब ठाए, नाना विद कर दंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सुमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगाश पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सब माय समानी। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभुता सुखदाई, विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कह रह प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत्ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि हो करने हार, और न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। सब के रंग रात जन रहे, गुर के बचन पदार्थ ले। ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़पागी, जन के संग एक लिव लागी। गुन गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रभ आया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना, जिसते उपजा तिस माय समाना। बस माय ले बस गडाई, ताको पिन ना कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ न काटत आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहु पांत, तिसके कर्तव्य से जात। मारे न राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत एवं मंथन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अगर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग।
नाम रस जो जंत्र स्थाने मंथन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सब काम बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुर समाए जो हो आहो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हरा एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ हो बसे सगल व्याध मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दश्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा फाद के संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल उदमे उधार करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र गो दो हर के नाए दैव स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा के हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कौन सना था। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कौन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतर स्मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कह मस्तक लेख। एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी पगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत पगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच कुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। पगत पाए तरी है संसार बिन पगती तन हो सीछार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। पगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल पगत वचल सदा कृपाल।
अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा सर्व कृपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप है सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्व गुण निर्गुण

फिर जाप अष्टपदी जब अकारते हो कचना दृष्टि ताप पाप पुन कब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोक्ष व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

तस को आते पहुँचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जिंजाल, होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की व्याख्यान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पास का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज, आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जा तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे ले समाये। सुनते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसार है। तिस तज अगर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिसे त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकुम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पे निर्वैर, अनदिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्ये को नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन से पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एक का टेक रखो मन माहे, नानक दौर न आवे जाए। तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ध्याए। निरपो जपे सकल को मिटे, प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन देखत कुदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम।
सुन समाद अनहत तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत करण माए आकाश दयाल सर्व लोक पूरन प्रताल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइए गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार सब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस तब ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस नहीं मिलाए कौन निकट कौन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वर्तारा सर्व नैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जात एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां ले समाए इसते होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतने की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि दत्मित कहीं न जाए दूसर होए तासो जी पाए तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस पर साथ सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथे।

प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए अस्थान, बहु न हो वे आवन जान, हर तन काढ़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

दास सुंदर चतुर तत्व का बेटा सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बस

राम नाम तन संचवै साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कर

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिद, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म

प्रीत हर नाम न जपें करत विपरीत परत्रय रमें बकें साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल इहु धर्म। श्लोक दुर्मत हरि।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, पतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दे।

संत प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे आपको कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊज।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

आई कुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिनकी तीस पार लगाई गुरमुखानो।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी। जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावे तिस बख्श ले सो साहिब मन पानी। जे को उसदी रीस करे सो मूर अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुण तास, जन नानक नाम से आए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिन के मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चित में नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे देव जाए। नानक दोही श्री खसम आपे वरत है, नित कर कर देख।

कनेरियां जे कर वथ होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हथ टड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटिए मिर संगत सुवरण होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उसदा पाक छड गुर पाक बह जाया जो गुर गो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्या

निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सत्य वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास, कालन कूड़ियार न लबनी कित खाए पाले। जिना सतगुर का आख्या सो खावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कितरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओह आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, एक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा, जिना अंदर नाम निदान, हर तिन के काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सब को वल, सब दर्शन देख करें साबास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करें रह रास। गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी, तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना, तुझ जेवड मैं होर को दिस ना आवई। तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मोह कुटंब दिस आमदा। सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे। से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा, अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूर मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याए दे, से विरले थोड़े। जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याए दी, से खाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कड़े मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा, मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखैनो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुख आया, प्राई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर के पेजिया, ओथे भी मुह काला दुहा वे मुखा दा कराया। पड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए के उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया। हलत पलत दोवें गए नित पुखा, फूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो साचे मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब उपाया। महला चौथा, साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे, जिसदा नफर किथों रज खाए।
जे साहिब कै कर वथ होवे सो नफरे हथ आवे अनहोंदी किथों पाए जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे न कोई पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे भगत मुखे ते बोल दे से वचन हो वंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार सरंदे ओए विचारे क्या करे जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करें निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याय दा वड़ी वड़ियाई कुछ दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही इक तिल किसे दी कटाई सच साहिब सतगुरु के वल है ता चक चक मरे सब लोकाई निंदका के मोह काले करे हर करते आप वदाई ज्यो ज्यो निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया।

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत दुआई। कोई अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या, आपे पैज रखे प्रव सोई पौड़ी, काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को तोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ सिद्धू किछ गुज्जा ना हो।

चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, ज्यो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वडभागिया सोहागणी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको को कोई नाहे, हर उत्तम सिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोय आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

0: से जंतु भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुरु मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुरु मेली उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुरु पावसी, गुरपुरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, ज्यों गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम को लिया। हर मेलो सज

सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाए रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती सच्चे स्यों लग

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन।

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी इक मन इक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर

पौड़ी। सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान। कर्मी सतगुर पाई है।

पौजल डुबदिया कढ लए, हर दात करे दातार। तन तन से सहा है, जे नाम करें वापार। वन जा

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

बिन गुरु मनुआ ना टिकै फिर फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल हो है ता सतगुरु मिलिया आए जन नान।

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याया, सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला, गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइए चित, क्यों सास गिरास विसारिये, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

पासु। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन, कर आपे आहर संत सहाई नानका।

आजे करण कारण समरथ पौड़ी पंजवा लै फाहे राती तुरह प्रभ जाने प्राणी तक्के नार पराया लुक अंदर ठाणी सन्नी देन भी खम ठाए मिठा मदमाणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवां नरक कोर बहु दुख कणे अकिर्त कणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवां अवखद सबे कीतेन निंदक का दारू नाहे आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवां तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदेशे।

होए मरसन बुट नानक कौ गुर बख्शिया नामे संग जुट। श्लोक महला चौथा। तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सदिया सत्य दी पिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आन तपै पुत विच बहा लिया। पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ।

मन मुख मूलो पुल्या विच लब लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

खांदे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर न

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबोल।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो हुए।

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख तू।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना खान थन अंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौज।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साध

नानक सह सह गंत मैला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै।

0: पौड़ी
1: ओथे अमृत वंडिये सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास। महला पंजवा। जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर।

बिखे कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

आया पूरन अगम विस्माद। नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तोह ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते, करतब करन पलेरिया मद माया सुते। फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाउ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान होए।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे, चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे, प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए

पंजवा जाचक मंगे नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मन

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारण कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्रात

काया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। चार चरण कहे बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्वस छोड़ महारथ।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत

तू मिल रोई है जो पैरसना राम न कहबो उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ जस देखिए तरवर की छाया प्राण गए कौ का की माया जस जंती मह जियो समाना मुए मरम को का कर जाना हंसा

होती, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पति आए, चार अचार रहे उरझाए, पाप पुन दोए एक समान, निज कर पार तजो गुण आन, कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाय परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जा

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कच तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हासे ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पे चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या, सांत पई जब गोविंद जान्या। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

है मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाय मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म में कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

आग कौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत पुकारण जा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

व्यापी मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मुन जो मन मार है, मन को मार कहो किस तार है रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

सिमरत पाई, सांकल जेवरी ले है आई, आपन नगर आपते बांधिया, मोके फांद काल सर सांधिया, रहाओ कटी न कटे टूट न जाई, सासापन होए जग को खाई, हम देखत जिन

मुख पांचों अमृत खाए, ते मुख देखत लू कट लाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा, रहाओ काया बिगुति बहुविध पाती, को जारे को गडले माटी, कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी, आपे पावक आपे पवना, जारे खसम ता राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

जो जागे केतक सिद्ध पै लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो होए ना आना कह कबीर राम नाम पछाना।

ना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसे नितानित चीत, माया

पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

ऐसे सुन समाया, अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, इहो जग बेदिया पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना।

कहो कबीर अनुभव एक देखिया राम नाम लेव लागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मन

जोड़ी। पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहे बड़ हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर रही।

तोल न तुलिए पाचन शेर अधाई, जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

प्रेम होए। जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाए।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारे रे हीरा लाल।

उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुबत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कहो शीस बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया।

कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव गौड़ी। अग्न न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेर ना आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर, यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

चनन की लुबद ना त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालस्यो ते फिर ग्रह परयो, भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो। रहाओ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हे ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, चूठा पर पंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए, जो संपै

विश्वास था। पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा, उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय, एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय। रागोड़ी यारवा आस पास कन तुलसी का बिरवा, माज बना रस गाऊं रे ओ आकाश रूप देख मोहि।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डरप है सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जी जोन में प्रमथ नंद बहु था कोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ।

नाम पदार्थ मने बसाये हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो।

जो कामन फूली बस अनूप न पाई, कहत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना।

सिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है खाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहां बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है तोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अच्छा।

सस बिगास संपट नहीं आवा, अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठग गया।

अतर तरयो न जाई, तन त्रिभवन मह रहो समाई, जो त्रिभवन तन माहि समावा, तो तत्ते तत मिलिया सच पावा, थथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा इहो थिर न रहावा, थोड़े थल थानक आरंभे, बिन ही थांबे मंदर थंबे, दद्दा देख जो बिन सनहारा, जस अदेख तस राख बिचारा, दसवें द्वार कुंची जब दीजे, तो दयाल को दर्शन कीजे, तद्दा अर्दें उर्द निवेरा, अर्दें उर्दें मंज बसेरा, अर्दें छाड़ उर्द जो आ

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

वारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नाश। जब लग कट में दूजी आन, कौलो महल न लाबे जान, रमत राम स्यों।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंचर विद व्यवहार। रव परगास रजनी जथा गत जानत सब संसार, पारस मानो ताबो छोए कनक होत नहीं बार। परम परस गुर पेटी है पूरब लिखत लिलाट, उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सास सुहागण होए, आशा महला पहला गृह बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दिसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदासे परमल रूप, उजल मोती चूगे हंस, सर्व कला जगदी

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ।

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकत कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहुपेद, अठ मज्जन हर रस रेद, गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे तुर पागे, आसा मेला पहला, निव निव पाए लगो गुर अपने, आत्म राम निहारे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले तहु मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाए,

हर पज मेरे मन गहर गंभीर आ रहा हो। अनंत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अप

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रख नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोख।

कारी जा पंच राशि ता तीर्थवासी कुंगरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसियों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

सिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैरवे।

जातिस पावे बख्शे सोई, गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जह देखा तह एको सोई, कहत नानक ऐसी मत आवे, ताको सच्चे सच समावे, आसा मैला पहला दुख दे। तित सर्वरण भई ले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन्ह।

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश ओंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पहला लख

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जेवसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक खटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग दनार।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश बे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पे। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

प्रणवे नानक जात कैसी, आसा कर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल उदन करे हार, साहो पजूता कणवत नानक।

इमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला पुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

मां हंडाव जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्तूर नादन पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिख तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर जोगी खीवा अमृत धारे आशा मेला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सजना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरुष।

एको नौत आए वड्डा साध करे मन भाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाणे।

हर दर्शन पावे वडभाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ।

समाए सेवड का घी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विचुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अदम

लागें पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करनी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करनी कीरत नाम वसाई, आपे देवे तिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वसा।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस

कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावे सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए, रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे न आवे जाए, पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए, पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए, रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा तगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर के बचन पगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मने आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल पगत हर स्यो चित लाए, पगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

होई गुरु प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुरु कृपा से मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है पाये गुरु विचार बिन नामे जम के बस है

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया पुरम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ न है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, कराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

आ जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण परमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमुख मन चीता। रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमुख बिकता। नाम बिना पुष्टि मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा। हर हर हर जस जपे वड पागे, नानक गुरमुख नाम लिव लागे। एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए।

हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जानी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यागो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

स्थिर होई है। गुर पूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार सब समाणिया रहाओ। पूरब लिखे देह से आए माया, चलन आज के कल तुरु।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चार मैल बुलाया रहा। अंतर नाम निदान गुरमुख पाइए, अंदिन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वक्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ है गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

बताया। हम हर दिन खिन पल रह ना सकू रहाओ, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सकू हूँ एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हम हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाए। राज शरण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाए।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख निरनावा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राति तन सुहागना।

चार जित गृह वसै सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामण गुरमिल हम पाई जज काज परसाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृहो जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोह।

गल लाए नानक दास तेरी शरणाई प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चार सौ दे को आया वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद सौदा गुरमुख किने।

कर लोग फिरे हलकाए, निंदा करें सिर पार उठाए, माया मूठा चेके नहीं, पर में फूला बहुती राही, बाहर पेश करें कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाय बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा, अनेक सुगंधत तन में ला।

बस्तर भी कूफन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावाता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुक्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

अस्त रख परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाई है हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

तब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कै अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल रिद अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राये, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जा रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वक्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, ऐसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम ना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर

गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोड़ी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाख पे बिस्माद, नानक गुरते आया साध।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक एक है एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अर्ध करे सास सास समारे मां को है अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूप वंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छीवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काबू बाते आगे ठोर न पाया रहा किस पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जे कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

ना छुपाया कूड़ कपट वंश निमुनिया दा बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब

मुक्ते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पा।

आई रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरध समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काद लिए मां पौजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हार

मन की और किसके आप सुनाये बिन नामे सब जग दोराया नाम मिले सिपाही है क्या कहिए किस आप सुनाये जे कहना सो प्रभु जी पास सब किस की ता तेरा वर्त है सदा सदा तेरी आस जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये नानक नाम अदा।

महाकोरते बा पकड़ गुर काट लिए। निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला।

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार है जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते नानक सद कुर्बाने। आसा महला पंजवा मुह मलन नींद के छुटकी।

काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो कौन लुट्यो री दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहो री ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहो री काजर कोट में पई न कारी निर्मल वरण बन्यो री महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्यो री कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक।

तलय कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर पगत बिना ले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया माया चलिया बिकार बिखलिया शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया अमृत नाम कहा मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाये पद निर्वाणी आस पास दिखुआ के कुंता बीच अमृत है पाई रे राव सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत आन जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ताहो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सच शब्द कमाओ फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना तेनु सुख नानक अनदिन चीना। आसा महला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौकुंत माने। दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। राव जाके निकट मोह आवे कोई सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू ना आवत काम संत प्रसाद का को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

सूत्र होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पत पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी।

किल बिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहा तप के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुजी मन ने चलती आ नाम पदार्थ नौ निज सिद्ध नानक गुरते पाई बुद्ध आशा महला पंजवा मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते पै मन निर्मल हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्तारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खूए कै ओही कट कट अंतर

रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

तुत कतह न डोले कहू नानक जो राचे नाए हर माला ता कह संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पट तू करवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभ पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जनता का।

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोए लादी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद पली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपैतनी राव नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसा।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

मनसा मेरी देख चलत मन पै दिलासा नानक दास तेरा परवासा आसा महला पंजवा अन दिन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप में खाए मिठाई सोचत साचत रैन बिहानी अनक रंग माया के चितवत कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधया काल के फांस सकत सर सांधया बालू किनारा तरंग मुख आया सोथान मूड नहीं चल कर पाया साध संग जप्यो हर राय नानक जीवे हर गुण गाए आसा मेला पंजवा दो पुके नावा उनके संग तू करती केल उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे।

हर, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्थाटी, ओस बिना तू होई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप।

को तृष्णा जाओ निर्मल ता हम जचना हम किछ नाही एके ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सारी सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तां पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमुख निमुख एही आ

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन आधार।

तिसे अराध मना बिनाशे सगल रोग राखनहार अपार राखे अगन माहे। शीतल हर हर नाम सुन।

पुरख बिराते हैं बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक दिन रहम ते आवो मार काडी सगल उपा दे क्यों जपियो पाई पुरख विदाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा मेला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे करी मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक शरण पछानी।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट।

सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग ऊतमो जुगा माहे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन ला।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहि नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना कारण करना कारण करना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आशा मेला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मेला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट आही आसा मेला पंजवा हर बिसरत

सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो, तद ही कर जावे। लोभ बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका, पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजे, परया दीवान लेखे ना परया, जिह कारज रहे ओला, सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद करहा हर हर मन प्यार हा गुर कहा सोचित थर हा अंश्यो कोर फेर हा ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ पंकज मोह सर हा पग नहीं चले हर हा गह दियो मूड नर हा।

ना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताँ को सगल सिदे हां, अंदिन जा गया हां, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हां, दुर्मत खोये हां, दासें रेन होए हां, व्यापे दुख ना कोए हां, भगता शरण।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन

सिरत भी पूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल से दूर, जल में ज्योत रहा तरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

सोच तानी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोह बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए। रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई। सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला। अंतर साथ सबे सुख नाला, नजर करे राखे रखवाला। त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे। शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा।

जमन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाले हालत पलत निभी तुझ नाले सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख बिन पै भगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक।

सांस अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

कोई न पावे, बालक बिरद न सुरत प्राण, पर जो बन बूढ़े अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान, जिसका अन तन सहज न जाना, परम फुलाना फिर पछताना, गल फाही बोरा बोराना, बूढ़त जग देखिया तो डर पागे, सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

गुरमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम दिन क्यों मन तीरा अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द।

ग्रास इकत खाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ

नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सिखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ कनिक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिसको बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके।

अवर्ण औषध तंत्र न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमद पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी, रहाओ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोक्सरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे।

मिले खुदाए, एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पूछे सुख, एक ना एहो लिखिया बे बे रोवे दुख, जो तिस पावे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जरवंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान संगोली हरमा।

लड़ाई, रण में तेग बगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुराणी, इकना पेरण।

सुनाइए दुख सुख तेरे पाने होवे किसे जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो।

जे कर बूझै आपना ता नींद न होए, जे चलदा लै चलिया किछ संपै ना ले, ता तन संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें नित तीर्थवासा आप न चीने।

हर दर्शन दीजै, गुरमुख नाम ते आईए, मन मंदर पीजै रहाओ, कूड़ा लालच छोड़िए, तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाइए, परमार्थ जाने, यो मन राजा लोभिया, लुभ तो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारिए, हर्षो बनियाई, कलर खेती बीजिए, क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पीजई, कूड़ कूड़ गडावे, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हों मैं बिखमारी, दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई, मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिए, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच।

मैं तरिया तर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सोजी पई गुर सब्दी मेला रहाओ हौ मैं गर्भ गवाये पाये विचार साहिब से मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघ्न न ला।

पाई है, खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा कुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई है, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगह नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख कर।

कांडिया नानक नजर करे हो मिले सच वांडिया आसा मेला पहला आवन जाना क्यों रहे क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घनो नित सहसा दोई बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतुराई सतगुर साध न सेविया हर भगत न

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साक्षात तीन मूल मत।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथे।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मै बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुरते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सत गुर मिले आप गया, त्रिभवन सोजी पाई। निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए। अपने हाथ वडियाया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे। बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए। आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई। जी जंत सब तिस दे।

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पंडा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भय जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

हों कर दी सब फिरे, बिन शब्द हों न जाए, नानक नाम रते तिन हों मैं गई, सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई, ना मन निर्मल होए,

पाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

मेल लै इक दरगे मार कड्डे कूड़ियार इक तुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए इक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक सत्यों लिव लाए, नानक जे सुख लो।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए रहाओ। मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे। जिना पिर का स्वाद न आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

गया सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भगति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आख आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न हो वही ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

भगता की जत पच एको नाम है, आपे ले सवार सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्य सार।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुर पुरख ना फेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सहलैया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध च्यों निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद।

दिखाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिस कै लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुखते कह न जाए साची प्रीत ना टूटे प्यारे जुग जुग रही समाए जो तुद पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारा।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ हो आसो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखे बूझे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रया। फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया। गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत।

गुरुमुख आखे गुरुमुख बूझे गुरुमुख एको जाने रारे रव रहा सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाय तंत्र।

किछ जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दात।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर, तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे, मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन इक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जग

हर दरगे मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निद पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

सूरज चढ़िया पिंड पड़िया तेल सावन तातो जम मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक।

साचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किछ जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाण।

दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत ने सारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहे था गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिख नाश गवाया, राम गुर पर कह त्याया मैं हृदय राम रवाया। राम रवे आराम हृदय परम गत पाई, जा गुर शरण आई आए लोभ विकार नाव डुबदी निकली, जा सतगुर नाम दृढ़ा।

रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारया ते मनमुख मूड अपा।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए, अस्थिर होवे जन्म मरण।

तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई परम चूका आमन जान जियो आमन जाना परम को पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सिखाई गुर सबदी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया से तन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगे पग साधु मन चूका सोग विजोग जियो जिन हर मीठ

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ, गुर करे पसाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

अपना कार्य आप सवारे, आपे तारन तारे, कहो नान सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे। नग्न दे नौ निदे मेरे कर में आई राम, सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम। नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा, गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा। गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई, कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई। सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा, पाया खजाना बहुत निदाना सामत मेरी आप खड़ा। सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता, कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता। आता महला पंजवा, अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर मुन जन सहज वखानी राम, सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया, तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी। बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी। हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम। वड पागी सत संगत पाई राम। वड पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे, गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पे। कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई, बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई। हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम, वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता, कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता। गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे, बिनवंत नानक शरण तेरी रात कृपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम, तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम। हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे, अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा, बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा। आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे, मिल संत संगत आराध्या हर कट कटे जीठा राम राजे। हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे, गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे। प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा, हर नानक बेदे चरण कमल किछ आम न मीठा। ज्यो राती जल माछली त्यो राम रस माते राम राजे, गुरपूरे उपदेशिया जीवन गत पाते राम राजे। जीवन गत स्वामी अंतर जामी आप लिए लड़ लाए, हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते, जल संगराती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे, माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है, हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है।
कृप सुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुरसूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुरु गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पिय जह दूख सुनिए जम पंथ पणिये तें साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न कीजे इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरण पतार उर्जी पिह शिव यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने गुर थी आसाखी ता जिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय आसा महला पंजवा श्लोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे जब ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाप गुपत करगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे

अवगत अगणत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी यो दान मान नानक पाए शीश साधे तर चरनी है स्वामी ला तन्यवा श्लोक उद्यम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराद हर हर त्याय सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जम पे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम

सैंग सूर्या अगाद बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह जिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का के अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तद आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

संत। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। कतहु न पावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत ना आ।

वे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख महारे कब प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारी उधारे पगत संसार कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर पै शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुन्नी पुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इखिनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिनवंत नानक रंग

सुख सहज सर से हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सहारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तै क्या चिर लाया मोलत कुंडिया, कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया, तो माया करे पाप अमित्या, तन पसंद तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया।

नह जाए किरत मिटाया। काठो हो मिर्ग जिवें पेख रैन चंद्रायण, सुखो दुख पए नित पाप समायण। पापा कमाने छड़े नाही, ले चले कत गलाव्या। हर चंगोरी देख मूठा कूड़ से जा राव्या। लब लोभ अंकार माता गर्भ पया समायण। नानक मिर्ग अज्ञान बिन से नह मिटे आवन जायण। मिठे मखमुआ क्यों ले उड़ारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरिये तारी। तन दुहेला पया खिन में खसम चितना आयो, दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो। गुज्जा कमाना प्रगट हुआ ईस पुते फुहारी, नानक सतगुरु बाज मूठा मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभु की चरणी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर शरणी। बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत पर आया। राख लिए रखन हार है सदा निर्मल करनी, नानक नरक न जाए कभू हर संत हर की शरणी। आशा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सहु आप निरा प्रभ संग सोहंती, संगे सोहंती कम स्वामी दिन सुरैनी। रावी है सास सास सितार जीवा, प्रभ पेख हर गुण गावी है। बिरहाल जाया दर्श पाया अम्यो दृष्ट सिंचंती। बिन वंश नारक मेरी इच्छ पुनी, मिले जिस खो जंती। नसवन जो किल विखो परता कर आया, दूते देन पया गोविंद।

बधाई नै अंत जाई पाया बिन वंस नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत तहे पलायन परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब तजे गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण बिन वंस नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर।

संग देखे करणहारा काय पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह तारी है। शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, कूड़ कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत

गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी सुज बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात। मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंगन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत। अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमें।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये कर्तना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर्य चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्य आन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चल साओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाय ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जाई जे किसे आने रास नान गुरमुख जानिए जाको आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओ कह सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चालिया तेरे नायरते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाम के फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत

राम जे तिलक नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुना सो करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार, इक होदा खाए चले ऐसा उतना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार, कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार, नानक पगता पुसलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार, महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चर चर को अंगार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी, बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला, हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया, हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिय हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सीख होवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना, हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांदर सूझे ज्ञान में होना कब तक लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेख है तिहा वेख महला दूजा, हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए हौ मैं एही बन

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्फ बर्फ, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुरु बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किस खाई न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंग न जाने फिर पछताणी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी। भगत तेरे मन पाउं दे, दर सोहन कीर्त गाउं दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताउं दे, इक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैते आए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कप्पड़ कूड़।

सूरत होए, नानक पाहे बाहरा कूरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पवती जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नच्चे बाजे वावे रूप करे सिंगार, उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, कर्मी कर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार, सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे, पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला। गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए, सवनी चाला मारियां करता करे सोए, अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे, जिनकी लेखे पपवे चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया, ए ना जनता के वश किचना ही तुद वेकी जगत उपाया, कितना नो तू मेल लह इकापो तुर खुआया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझ आप बुझाया, सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवाता आत्मा।

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझेता है, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिम्मल रुख सरायरा अप दीर्घ अतमुच ओज आवे आस पर जाय निराशे कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नान का गुण चंगियाया तक सबको निवे आपको पर कौ निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादंग शिल पूज बगल समादंग मुख टूट बेफूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सब फोकट निश्चो कर्मंग कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तब कपाह कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महिला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वै निदारी तग ना तैरी तग ना अखी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे

कर लावो गोबर तर न जाई। तोती टिक्का तेज अपमाली तान मलेच्छा खाई। अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहे तरंगा महला पहला। मानस खाने करे निवाज चुरी वगाने तिन गलताज।

दूर नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई।

पौड़ी तिरुपला ने पौन वेग हर रंगी हरम सुवारिया कोठे मंडप मालिया लाल बैठे करपा सारिया चीज करन मन पाम दे हर बुजन नाही हारिया कर फुरमाइश खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जर आई जोगन हारिया। श्लोक महला पहला जे पर सूतक मनी है सब ते सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए

अंतर देव का लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाप पवित पापी सो संग दया चुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए चित मुख चुका पाए महला पहला पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही।

का फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, अफर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

आण ना सके रास, जे एक अदसंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी, चाकर लग गए चाकरी जे चले खसमे पाए, हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे गुना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, वजो गुआए अगला।

आए दुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए, नानक सेवक काड़ी है जैसे की खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरका के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हो कैसे करी।

कियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया, देव करो दया मोहे मार्ग लाग।

आपा पद निर्माण न चीनिया इन विद अभियो न चूके कहीं न उपजे उपजी जाने पाव अपाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग ऐसे संत न मौके पावे डाला सो के दागट कावे रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम। और

लुंजत मुंजत मोन जटा तर अंक कऊ मरना तांते सेवी अले रामना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना रहाओ आगम निर्गम जो तिक जाने बहु बहु ब्या करना पंत मंत्र सब औखद जाने अंत तौ मरना राज भोग अर छत्र सिंहासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तौ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो रामे जंपो मेट जन्म मरना आशा फील रबाबी बल्द पखावजे कौआ ताल बजावे पैर चोलना गधा नाचे पैसा भगत करावे राजा राम तक

पर्वत छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी ते कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहाओ, काकी माप पिता को काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कह पाई, इस बंदे से।

पदे इक्तुके सम सुन अंग अंत नहीं पाया वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तकना जाए रहाओ तन कर मटकी मन माए बिलोई इस मटकी में सबक संजोई हर का बिलोव ना मन का विचारा गुरु पर साथ पावे।

निकूटा मंदल ना बाजे नट पैसूता बुझ गई अगर ना निकसो तुआ रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ टूटी पंक्त न बजेर बाब फूल बिगारे अपना काज।

हार होगन हारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो शायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन रासन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर।

साखी शब्द सुरत नहीं उपज खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाका थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दशा बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन दशियले गुरु प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई जिन सास पछाण्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा ए सर्पनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई ए बस्ती का बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आशा कहाँ स्वाम को सिमरत सुनाए कहाँ साकत कह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहाँ कपूर चराए कह बिसियर को दूध पियाए सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत ले ले नीम सिंचाई कह कबीर ओआ को सहज न जाई आशा लंका सा को

अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरव जन्म कर्म भूम बीज नाहीं बोया, रहाओ बारिक ते बिर्ग पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तबहे काहे रोया, जीवने की आस तरहे जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हौ, पांचों तत बराती, राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबड पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट के तीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक पगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कासो कहो रे रहाओ, बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जे बिसुन नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा, रहाओ, हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कब हूँ न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं काशीक दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना, आशा, जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानं, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधानं, बाबा

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब फुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

कहां गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ

गुप्ता ही रा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहुरह पे ही है बुरी अब की स्वरूप

ले राखियो राम जनिया नाओ, इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा, बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ। कह कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियन मेरी जात गवाई आसा। रहो रहो री बहुरिया कुंगत, जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ। कुंगत काड गई तेरी आगे, उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगत कादे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगत तेरो तो पर साचे, हर गुण गाय कूद है अर नाचे। कह कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते आसा। करवत पला ना

आशा, कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंग तन आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना, तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाई, हर का संत मरे हारम बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक से तिरावो बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नरक से।

आठ पैर अपना खसम के आवो। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच खेडे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो।

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस, मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ, त्रिगत जोन अचेत।

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

संत आचरण, संत चो मारगे, संत चो ओलग ओलगणी, और इत मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सन तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मक्तूल सुपेत सपेयल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा। जाती ओछा पाती ओछा ओछा।

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

माटी को पुकरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहा। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगड़ राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मये, प्रेम तगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भये। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत।

आदि माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वक्षया पार ब्रह्म पंक्ता में गनिया

कीचे नाम त्याये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंगे आई।

रहाओ। रब सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरमुख होए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा, दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरे, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो गई, जीवन पदवी पाए। रहा गोविंद प्रीत सो एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी। आप से ती आप खाया, कामन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समय। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय। कूड़े की पाल विच्चो निकले, कां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसे सहजी रहे समाए रहाओ जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए तिहु कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए गुजरी महला तीजा राम राम सब को कहे कहे राम न होए गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोए अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर किस कदे ना भी

अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीरथ तिस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पाघहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याये सबको दान दे प्रभ ओ है, मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है, दुर्मत पागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सारे सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुरु गुरु पूरा हम पापी गुरु निस्तारे रहाओ। गुरुमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरुमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुरु

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगिन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव दिहाई, तन तन सबा सह।

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहा जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

सारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असठ मज्जन कर स्नाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप, हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो।

कहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए सियाना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

अमृत पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु।

हर हर सदा पंजो जगदीश रहाओ। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। काकड़ पथ परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभी न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो, हर चरणा हो कौला। नानक दास उन

कहाओ। देश कमावन तन जोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिदास होए।

पै कृपाल दयाल गोपाला का निरपय के कर आया कल कलेश मिटे।

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण ना बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वार आया, तै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक यो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुर दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

नाम निधान सतगुरु दृढ़ आया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, भय कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे, रहाओ। आठ

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाद कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहे है एको जत्र कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अवै दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजे टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो।

मुन योगी शास्त्र के कहावत सब चीने बस अपने ही तीन देव और कोट तेती सा तीन की हैरत कछ न रही। बलवंत

कहो नानक तिस गुर बलिहारे, जिन सबका किया उधार गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले पूरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक।

मेरे सतगुर मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहा। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिडानी लाही।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

पंजवां अपजस मिटे होवे जग कीरत दरगे बैसन पाये जम की त्रास नाश होए खिन में सुख अनंत से ती कर जाइए।

0: चरण कमल संगराज सगल जीव जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करके तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे किस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

करत कपटे अनक जुगत कर कायो बिसरत प्रभ के ते दुख गनिय महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आ गए तेक कर कृपा गोविंद दिया गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागे, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी, आठ पहरे

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सुखवंते ना

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख हो।

जल थल तरण जगन तह नाही आप आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि अंतर जाचे

चुक लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत ना।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी, रहा हर गुण रसन।

गुर शब्द हर रमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित्त वित्त ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म ब्याद।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यों बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर

हरी। गुरुमुख नाम अमृत जल पाइए, जिनको कृपा तुम्हारी रहा। सनक सनंदन नारद मुन सेवे, अन दिन जपत रहे।

तो दाता मांगे हाथ पसारी, भगत जना की उत्तम वाणी गावे, अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म पया तिनके रा, आप सरे कुलतारी, मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, कोई डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उर्वार न पारी, यो परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी, हर एक को सूत वरते जुग अंतर, सूत खिंचे एक अंकारी, रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी, नानक हर बिन

प्रभ आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी महला पंजवा, कर चौथा इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव, पतित पावन देव। पै त्रास नास कृपाल, गुण निध सफल स्वामी सेव।

मदमोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रज साध मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया। हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन दुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे सतगुर के

है पौड़ी, माया मोह अज्ञान है भिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुरु स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपिया।

केसनो कूड बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके ना, ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए।

मुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुरु पुछे सत संजम कमावे हो मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह है ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हो मैं मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए, कपट की तय हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जब हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना न सेवियो शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया कित आया संसार, फिर जूनी पाई है विष्टा सदा खुआर, कूड़े लालच लगिया ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार। पौड़ी। भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा। कल युग में नाम निधान भगती खटिया हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया अंदिन नाम ते आया, विचे ग्रहे गुर बचन उदासी हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले ज्यो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे दिखा किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया नावो देख आया, जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना लेही सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया। पौड़ी। माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा, मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाव प्यारा, जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यों लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे भिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले। त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी। हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय। हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय। हर कै पाणे सुख पाइये हर लाहा नित ली जाय। हर कै तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जाय। हर का पाणा तिन्नी मन्या जिना गुरु मिली जाय। श्लोक महला तीजा। वाह वाह से जन सदा करें जिनको आपे दे बुझाए। वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए। वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए। वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणिए सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस

तिस जेवड़ अवर ना कोए। वाओ वाओ बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए। वाओ वाओ अगम अथाओ है वाओ वाओ सच्चा सोए। वाओ वाओ वे परवाओ है वाओ वाओ करे सोए। वाओ वाओ अमृत नाम है।

लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, एथे सुख वडियाईयां दरगे।

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुणे हो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाये थाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे, जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माय बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएं वज, नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएं बेद कते मां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याएं इंद्र इंद्रासना, संकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिये, ओत पोत निरंकार कटकट मौलिये, कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है, जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा। चंग्याई आलक करे बुरियाई होए शेर, नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा। कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित, नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी। हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया, नौ निद पाई राज जीवा बोलिया, अमृत नाम निधान दासा कर कणा, तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना, कमावा तिन की कार शरीर पवित होए, पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए, आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है, मोहि निर्गुण चै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग, अठसठ तीरथ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी। नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस नाव विसारदा। आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किछ जाने जान बुझ विचारदा। अनेक रूप खिन माहे कुदरत पारदा, जिसनो लाए सच तिसे उदारदा। जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा, सदा अपग दीवान है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए, जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ। महला पंजवा। सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे, नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी। सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशिया, तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशिया। तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल तोए। अमृत साचा नाओ उथे जापिए, मन को होए संतोख पुखा त्रापिए। जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए, गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सत गुर सेव जाको कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किच लगदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छिडाए बंधन सगल काप, तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै किरपाल प्रभ हर हर से जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल चल मही अल सोए, नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए, पगता तेरी टेक रते सच नाए, जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामी रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अंदिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़िए, फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए, दस नारी औ दूत देन चमोड़िए, जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए, त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़िए, परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए, गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए, हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो इक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए, आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार, सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो पगता मन उठा सच समाहरा, तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना, नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन न जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादि आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही न होए कटे कट सारिया,
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आपसे सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जन त्याया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

चार पाव दो सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु

मले ना लाचे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाशे पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाशे कड़ुअलो मृग तृष्णा परिया नामे।

दूध तो बचरे थनो बिटारे हो, फूल पवर जल मीन बिगारे हो। माई गोविंद पूजा कहां ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्प

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप्त न पाया काए जपोरे काए तपोरे काए बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काए कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काए फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस स्मरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद प्राभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभं गुर प्रसाद रागदेव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख पाक सपागे।

लटरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रियो सखिया सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल। किस कारण हर टोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत की चोली है गुरु प्रसाद।

ते बिगड़ रूप बेरखी ज्यो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित्र मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देवदंदारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाय है। काट अब झट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के ते तेरा अंत न कतहु पाइए। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइए। देव गंदारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है। रहो कह फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंदारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

देवनारी मन सगल स्यानक रही, कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ, आप नेक पै शरणाई इन मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा नहीं। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप खापन हारे कुदरत की मना कही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद काहूं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल कहे हैं राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभ दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पर।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरे करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रे नाम आधार दीजे नानक को अंग सूख कने रे छके दूजा देव गंधारी महला पंजवा। मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फांदो पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो बलिहार नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो देव गंधारी महला पंजवा। माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नहीं पावे पूरन ब्रह्म रव्या मन तन में आम न दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी महला पंजवा। चंचल सुपने ही उर्जायो इतनी न बूझे कबू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो लोग सुने मन सुख कर माने देव कहाँ उठतायो फिर्त बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे तरना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसे मन होवे प्रगासा बहुर न दरबे परना सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना पयो कृपाल ठाकुर नानक को परयो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अनंत मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आँच न लागे अगन सागर के सरन स्वामी की अही है कोट पराग महा अकीर्त तन बहुर बहुर प्रभ सही है करुणा में पूरन परमेश्वर नानक के सर नहीं है। देव गंधारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के कुल विनाशे कोट मज्जन स्नाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तीजा देव गंधारी महला पंजवा। माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो सबसे नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गावे ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उधारो देव गंधारी महला पंजवा। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा आजुवाद भगत जन सेवक ताकी बिथे अधारा तिन जन की तूर बांशे नित नानक परमेश्वर देव अनहारा। देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर
ਹਰ ਵਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤਾ, ਅਬ ਸਭ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਨੋ ਸਾਧੂ ਤੂਰੀ ਨਾਤਾ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰਤ ਬਿਲਾ ਤੇ, ਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਗੋਸਾਈਐ ਰਹਾਓ। ਮੋਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਨ ਬਾਂਧਿਓ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਈਐ, ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਸੰਗਤ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਜਾਏ ਰੁਆਈਐ। ਕਰੈ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਧ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸੰਕਟ ਘੋਰ ਕਟੇ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਭਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਦੋ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਸਿਆਇਆ, ਥਾਪ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ਮਿਟਾਇਆ। ਵਰ ਨਾਰੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਬਿਨੋ ਕਹਿਆ, ਪਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਪੰਜਨ, ਮੇਰਾ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਰਾ ਗਿਆ ਰਹਾਓ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਭੀ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਸਹਿਆ, ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਸਾਧ ਨਿਵਾਜੇ, ਮੋਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਖਿਆ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿ ਜਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰਦਰਿਆ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਹਮਾਰੇ, ਸਰਨ ਆਓ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਰਬ ਪਾਤ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰੇ, ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰੇ, ਜਬ ਚਿਤਵੋ ਤਬ ਤੁਹਾਰੇ।

दर्शन नाम को मन आचे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस मोसे भी किस आराजी जो दिसते सो गाचे साध संगत की सरनी परिये चरण रेन मन बाचे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया चे आय पयो नानक गुरचरनी

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया

बहु व्यंत अत बड़ो बहरो खाहा नहीं अगहु चा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंखा अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुंचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव। गंधारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ब्रह्मा मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो ना पाई रविया रे रविया सर्व थान ज्यों बैसंतर काश मझार बिन संजम नहीं कार्य।

आओ कह पे थारो हों करत तराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध और साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग।

मात पिता पाई सुत बंदक अर सुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेर को प्रेत पुकार आज धरी को ने राखे कर के देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देवदारी महला नावा जगत में चूटी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या नीत रहा मेरो मेरो समय कैक है हिस्सो बांधो चीत अंतकाल संगी ने को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारो नीत नानक पौजल पार पर जोगावे प्रभ के गीत।

करिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत महको जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सपनावे यह ताको विभारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण ताहीं चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधिया फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठना मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कम

राज विहागड़ा महला चौथा। अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी, अमृत गुरमत पाए राम। हौ में माया दिखे मेरी जिंदगी, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हया होया मेरी जिंदगी, हर हर नाम से आए राम। हर साग बड़े लिख पाया मेरी जिंदगी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन वेदिया मेरी जिंदगी, जो बालक लग दुख खीरे राम। हर दिन शांत ना पा

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी है, करवाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी है, बिग बांधे हो।

गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आएंगे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत वित पाया राम गुर अमृत हर मुख

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ आया मेरी जिंदड़ी ए, बिक औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर के आया।

तर्क पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम से

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जन का मार्ग सा दे राम, मार्ग बिखरा साज गुरमुख, हर दरगह सोभा।

ए मन तन सब अरते हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जिए। आसा प्यासी रैन दुनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम पे संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श ना पाये राम, अवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पे संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक परम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु के आए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्थ तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रमुख हर हर।

मन पर कीक ना आया सहज ना लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए।

सतगुर कह तै पन ना करो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे न चूके दिन सब दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सब ला।

बंधन तोड़े सच वसे, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देखे किसे का, जिनकी आतन साज, नानक शरण करतार की, करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया, जदों आपे खात किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे

कहे कथिय न पाइए अंदिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करीजे आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कथिजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देवे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह पैके ते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी

पार पवे जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारद तुद करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा बिन सतगुर से

पर दूजे सब आपे इतसे आपे करे आने। इतना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने, जिना आपे गुरुमुख।

सत संगत सो मिलाप होए लिव कटोरी अमृत परी की कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

पौड़ी। आपे अस्थर तीर्थ करता आप करे स्नान, आपे संजम वर्ते स्वामी आप जपाहे नाम, आप दयाल होए पौखंडन आप करे सब दान, जिसनो गुरुमुख आप बुझाए सो सद ही दरगे पाहे मान, जिस भी तेज रखे हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए शब्द स्यो चित ना लावई, जित सुख वसे मन आए तामस लगे।

सतगुरु का पाना चित रखो संयम सच्चा नेहो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया

ओ सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बन जारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब तिसेनो सालायो संतो जिन दूजे पावे।

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

तुरख समय का हुक्म पाया वी सतगुरु चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरसा जाए।

बस सब कुछ तेरे बस है, तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो, सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्मे।

प्राप्त होए। इस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

एक को सच वर्ष है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

आप पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करने

गुर ते नाम पाया जाए, सच्चे शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए, रहाओ गुर के शब्द विच्चों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हों में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हों में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हों में जाए रहाओ, हों में सब शरीर है, हों में ओपत होए, हों में वड्डा गुबार है, हों में विच बुझ ना पके कोए, हों में विच पगत ना हो वई, हुक्म ना बुझिया जाए, हों में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हों में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे

अपने गुरु को जाता रहा। मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया, हूँ कर साका उपाव बहु तेरे, नानक गरीब राखो हर मेरे। बट हंस महला चौथा, मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाणी, हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी, जो फिर पावे।

मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन कब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख कपि सर कपि साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पठाने, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिसे जनावो तिन्हे तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओत तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवा,

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

विस्मा रहाओ। खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जाने।

अन दिन सत सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विचो बल जाओ दासन दासा हुए रहे पावे सच्चा नाम रहाओ जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे त्यों

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाये मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया वडहंस महला पहला छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद काया पूर विगार काहे नाई है नाता को प्रमाण सच कमाई है जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए भई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया वारी खत्म कढाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना वारी खसम कढाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब उपाय है आप आपे सर्व समाना सर्वे समाना आप

एक कारम तारम ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे राज तेरा कब हो ना जावे राजो ता तेरा सदा नहीं चल एहो कब हो ना जावे चाकरता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हों बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे जप

करो कृपा ले हो जमो बारे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी किच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे, श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी, बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने तिरके रंग रती मोये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोये फिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता फिर पाया गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यो रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया हौ मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला।

पंख सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडहंस महला तीजा गुरुमुख सब वा

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस कुंज तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर बिचारा मन मुख खेती वणज कर थाके तृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड़ पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वधंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसें कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन

आए माया मो सब दुख है खोटा एव वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम बहु वधे विकारा सहसा एव संसारा बिन नावे पत कोई पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखी है और करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वडे आई राम ज्यो तिस दी वडे आई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हों में माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द विचारी अंतर फूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नजर करे

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए, दिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा, गुरमुख होवे सोई बूजे, सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले होर।

बख्श ले। फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच।

माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे, तिस जेवड़ अवर न कोई।

माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के भज पए हर शरणाई राम, अरदास करी गुरपुरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड अवर ना दाता सेवा लागे सेवड पागे जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाए, जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया।

नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम, हो मन तन देवा किस काट शरीर आराम। हो मन तन काट काट किस दे, जो सतगुरु वचन सुनाए। मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुरु दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए।

आपे हर आपे मूले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे अवर न करना जाई, बहुत स्यान पलया न जाई, कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधे

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

खड़ग हत जीना जम कंकर मार बिलारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विकंपयंगा अनतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुरु सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

महामार्ग पंख बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोरी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

सत्य आया मंगल गाया, चूके मनो आदेशा, सो प्रभ पाया कथे न जाया, सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता, कहो नानक तिस जन बलिहारी, तेरा दान सबनी है लीता। कहो पाना ता कृत अघाए राम।

जिन हर हर रसना पनिया राम सो सह सुहेले गुणे अमोले जगत उधारण आए तह बोह सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक किसको।

ठाकुर माने सुर प्रधाने हर सूची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक।

साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक सेई कांडिया नानक जाने सत साईं।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

वडहंस है सच नाम उधार सत संग्रह है सत सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की करतार नानक हो तिन

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर।

सवारणहारा। सूरत महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है।

सतगुरु मिलिया उल्टी भई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

उपजे दत मत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बौराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहा त्रै गुण माया परम पुलाया हौ मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद आपे आप वर्तदा प्यारा आपे आप अपाहो बनजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उजड़ पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप कराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पक्षण पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ मेला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवर न कोए सतगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिजक समाहदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिए प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर न कोए सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ मेला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथा पै आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेखे प्रभ आपे आपे वंचन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महा रस मीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप करे प्रभ आपे आपे जाल बतायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सदगुर आप है चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस प्रापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहो आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया।

आपे सेवा लाएंदा प्यारा आपे भगत उमाहा आपे गुण गावाएंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम उमाहा अंदिन अंद होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल।

जाहा कर बालक रूप उपाय दा प्यारा चंदूर कंस के सुमारा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूर्ख मुगदा।

होता हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

पावखंडन सब सुख नव निर्देशी हर जियो तेरी दासी राजा मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाई आनंद भया सुख सहज समाने सतगुरु मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संत

हर सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक को गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, कोट संतन की आही। बूढ़क मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरे नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस तय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे। शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरख को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही। फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिनमें उर्जो सगल संसारा। पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया। जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, सबना कर तू धारा। कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम तत सारा। किलबिक काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ, मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे। पूरन पुरख विधाता, श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई। करण कारण सम

साज संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सूरत महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाके प्रभ सरना प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो।

मेरे सर्व कला बन आई, प्रगट पाई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

तू मेरा गुरहाई सुनी ता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन जिहो दिखाई सुनी ता दूरी को बल जाए ए मन तेरा भाई रहाओ पाव मलोवा मल मल धोवा ए मन तैकू देसा सुनी ता हो तेरी शरणाई आया प्रभ मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुनमी ता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रह प्रसाद संतन के हर नाम है मीठा जन नानक को गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी फर्द जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर

रे बेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपने।

गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास न करिया रे। सोरठ महला पंजवा जिना बाप को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया। सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखाया।

से भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर से हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मम लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन कोट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ शरणे जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए तेह महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो तुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

न जाने तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरुष बिनाते तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते कहु नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। सूरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे कह तुम राखन हारे, पाव के सागर।

करण हार तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु ताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का खोखा कर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे। सोरठ महला पंजवा जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

तो अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकी कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू जाए।

दीना साद विकार बिखे रस्मा तो असंख खते कर फेरे नान किती प्रभ पाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ मैला।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हो मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, पर बारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी, जप अनग करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसरण कभू जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख मासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुक अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो कब हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहा बताओ कारी, जित हो में गर्व निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

समायो सोरत महला पन्यवा जाओ कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर को मंथन जीरे।

सोरठ मैला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ बिसर नाही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी जन नानक कतह न पावो सोरठ महला समझवा जा कै सिमरन सब कछ पाये बिरती काल न जाई किस प्रभ त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिलना।

जप जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाए बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी सात संत प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख विनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवरना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय।

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो।

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। पाप दया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सूरत महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ

आनंद सुख कल्याण मंगल च्यों कर आए कर स्नान रहाओ। साथी गुर वड्याई ताकि कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराशत लाथे मिल साध संगत के साथे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सितलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

आसन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भए सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

हर रसक रसक गुणदाया। प्रब काटिया जम का पासा, मन पूरन होई आसा, जह पेखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाते, निरपो नाम ते आया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, ठाड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरे है राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांप सहज सुख खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला। रहाओ।

पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला रहाओ। वड पागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वड पागा। हर अमृत बाणी गावे, सादा की दूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण आधारा, एह पूरन विमल विचारा, कर कृपा।

आया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जना रे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये जिस देवे पुरख विदाता

पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाये साध संग मिल त्याये मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो किरपाल।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सूरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ, करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय

सब कुशल खेम प्रभ तारे, सही सलामत सब थोक उबारे, गुर का शब्द विचारे रहाओ, साध संग मल लाखी, पार ब्रह्म पयो साखी, नानक नाम से आया, आद पुरख प्रभ पाया, सूरठ में

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जाती,

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम

जो शुद्ध भाव है मोहे से आणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभु आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे सोरठ महला पंजवा गुर मिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया।

जी जंत सब हाथ तिसे कह, सो प्रभ अंतर जामी रहा। कर्तव्य सब सवारे प्रभ।

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाक रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, हर दास सुनी पग

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए।

हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म पूर।

साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ समाली पूरन सबनी थाई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमा।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सूरत महला पंजवां।

पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाये, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाये रहाओ। ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे।

तोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाण बोले साहिब कै भाण दास बाणी ब्रह्म वखाण नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ध्याए कर सही।

संतोष पया संसारे गुरु पूरे ले तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणनी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे। गुर पूरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे। गुर पूरे

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिद। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यों परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रथ संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारयो। मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया। सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नामा। मन रे कौन कुमत तैलीनी, परदारा निंदिया रस रच्यो। राम भगत नह कीनी रहाओ, मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन। तन जोरन कौधाया, अंत संग काहू नहीं दीना। बिरथा आप बंदाया, ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो। नह उपज्यो कछ ज्ञाना, काट ही माहे निरंजन तेरे। तै खोजत उद्याना, बहुत जन्म परमत तै हारयो। अस्थिर मत नहीं पाई, मानस दे पाए पद हर पज। नानक बात बताई। सोरठ महला नामा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेह सिमरत गन काशी उदरी। ताको जस उधारो रहाओ, अटल भयो त्रू जाके सिमरन। अर निरपै पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी। तै काहे बिसराया, जब ही शरण गई कृपा निद। गज ग्रहते छूटा, महमा नाम कहां लो बरनो। राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा। प्राणी कौन उपाओ करे, जाते भगत राम की पावे। जम को त्रास हरे रहाओ, कौन कर्म विद्या कहो कैसी। धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुरजा कै सिमरे। पाव सागर को तरी, कल मैं एक नाम कृपा निद। जाहि जपे गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन। एह विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी। जा को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर। नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा। माई मैं केविद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह। मन रहो उरझाई रहाओ, सगल जन्म परम ही परम खोयो। नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर। नह छूटी अदमाई, साध संग कब हो नहीं कीना। नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन। राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा। माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत। के विदरो को ताहे रहाओ, वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

सूजत नह कछ ज्ञान काट ही पीतर बस निरंजन ताको मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी।

हार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो

ओ संग छाड़ सब पागे, कहो कहा जिया मन बौरे को, इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन, जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ, साथ छोड़ के झूठे लाग्यो। जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पह नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो नाहे मान अपमान।

एको चेतै मनुआ ना डोलै पावत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई।

ना दूजा भाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम न पाई। सुन समाद महापरमार्थ, तीन पवन पत नामं, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामं। कर्म सो कर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं, मन मुख झूठ लह पैमानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाखिया से ही साध जान, ज्यो गूंगे मिठियाई, अकथै का क्या कथिय पाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले तामत होवे, निगुरे मत न काई, ज्यो चलाए त्यों चाले पाई, होर क्या को करे चित्राई। एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुकम चलावन हारा। सेवा करी जे किछ होवे, अपना जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण में ज्ञान त्यानं, नाम मन पावे कहे कहावे, तत्तो तत्व खानं। सबद गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला तितुकी, आसा मनसा बंदनी पाई, कर्म तर्म बंधकारी, पाप पुन जग जाया पाई, बिनसे नाम विसारी, एह माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे वेकारी। सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे पाई, सो आत्म तत विचारी रहाओ, शास्त्र वेद बके खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूकी पाई, अंतर मैल विकारी। इन विद डूबी माकुरी भाई, ऊंडी सिर कै पारी, दुर्मत कणी विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाई है पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड बोल बिख खाई, पंडित दही विलोई है पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत, गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए, गुर मिले पौ मन वसे पाई, पै मरना सच लेख, मज्जन दान चंगियाईया पाई, दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वस्या चूका पेख, ए तन हाथ सराफ को पाई, वखर नाम अपार, ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार, सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक ना।

बुरबिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह फिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आख है अपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नो जम जोहे ना साके, काल न नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाए। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नो प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ, गुरमुख हृदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ, भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विदाता। हौं मैं मार मनसा मने समाणी, गुर कै शब्द पछाता, अचिंत काम करें प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारण हारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चार। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हौ वारी हौ वारणे पाई, सतगुर को सद बलिहारे जाओ, नाम निधान जिन दित्ता पाई, गुरमत सहज समाओ, गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवै अपना पाई, तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सोहागणी पाई, अंदिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए,
गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित लाए।

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगह नाही थाओ गुरमुख हो वैता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए टिड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

प्रम्पो हो वै नाथ मिल संत सवा मन मांझिए पाई हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल हो वै प्रगास। गुरु बचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासी है पाई हृदय होए प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला परपूर। सास गिरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा परपूर। जिना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई पोजन नाम आधार। नानक ते शरणागति पाई जे किलबिक काटनहार। सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तै अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनों की तो

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरणाए।

रोग पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंड

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही ना उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएगा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल।

मुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दरगह पैंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवै से ही पुरख जिना हर

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए अंदरों बारों अंधिया सुध ना काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार ना चुके ना संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुगचार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

है सब राज सृष्टि काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाया।

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इकस दिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

जो हर नामा हर मुख कहते आ, तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनते आ, तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ, तन

पलका हर हर दयाल होवे जिस ऊपर सो गुरुमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी।

गुरमुख हर कीरत फल पाए जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उठारे दब्यो सुत्या गई भी आए सतगुरु का शब्द सुन ना जागियो।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

मरकत लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ चूठी माया आप।

नाद समायलो रे सतगुर पेटले देवा राव जय चिल मिल कार दिसंता

मिल पारस कंचन होया, मुख मनसा रतन परोया, निज पाव पया परम पागा, गुर पूछे मन पतियागा, जल पीतर कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया, गुर चेले है मन मानिया, जन नामे तत पछानिया।

खारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कछ

लीन पकरफा क्यों अर काट्यो रांग कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी आपन बापे ना ही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

चुप चुप हो रहा हो। तनाश्री महला पहला हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोहत न जाना नानक बिनवे तिसै सरेव हो जाके जी पराना अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना नानक बिन वह सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिललाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए, कनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व दतार, तनासरी मेला पहला, चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता कसु ना छीजे, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सत्यार रहाओ, चोर सवालियो चोर सियाना, कोटे का मूल एक दुगाना, जे साथ रखिए दी जैर लाए, जा परखिए खोटा होए जाए, जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे,

संसार तुझ पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई राव, कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप करे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़या बूझे सो परवान, जिस सिर दरगे का निशान, तनाश्री मेला पहला, हर तीजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद, काल नाही जोग नाही नाही सब का टब, खानष्ट जग पृष्ट होए डूबता इव जग, कल में राम नाम सार, अखी तमीटे नाक पकड़े, ठगन को संसार रहाओ, आंट से ती नाक पकड़े, सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सूझे, ए पद्म अलो, खत्रिया ता कर्म छोड़िया, मलेच पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, अष्ट फाड़

का पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मले आमलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नन्ना एक को ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हम दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी महला तीजा कर दूजा चौक दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए। गुर कृपा से हर मन वसाए से तनवंत हर नाम लिवलाए। गुर पूरे हर तन परगासिया हर कृपा से वसे मन आए रहा। अवगुण काट गुण हृदय समाए पूरे गुर के सह सुवाए। पूरे गुर की साची बाणी सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई दुखदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसे मने आए। सब में वसे प्रभ एक को सोए गुरमति कट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिले मन मानिया। त्रासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अस अपारा गुर के शब्द परे पंडारा। नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोह जले अभिमान। गुरमुख हर रस चाखे कोए तिस सदा आनंद होवे दिन राती पूरे पाक प्राप्त होए रहा। शब्द दीपक वरते ते लोए जो चाखे सो निर्मल होए। निर्मल नाम हो मैं मल तोए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग तिस सदा हरख नाही कदे सोग। आप

जाए शांत न पाए, सतगुरु मिले सब कृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए, तनासरी मैला पी जाए। सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिन्हें प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए, हर के नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगाठ हर नाम ते आवे रहाओ। ए हर रंग गूड़ा तन पिर होए, सांत सिगार रावे प्रभ सोए, हौ मैं विच प्रभ कोए ना पावे।

वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक सास रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर से मैं तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अगन बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कहिए दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे वडियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पास मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हौ मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक।